0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. Jazz Cash से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की? हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए Jazz Cash है ना?
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
5: City FM 89.
8: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
3: We're playing your song.
9: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द Jazz Cash app now.
10: City FM 89.
11: You can't build a strong home on a weak foundation. When an expectant mother suffers from malnutrition, her unborn child suffers too, entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
12: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
13: City FM 89, we're playing your song.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: यू गॉट मी गोइंग क्रेजी.
7: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: अ प्लेट दैट इज फुल मे नॉट बी इनफ. मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान्स चिल्ड्रन हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग देयर कॉग्निशन, ग्रोथ एंड फ्यूचर. द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
9: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री, डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान's मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. बुक नाउ एट www.aeo.com.pk.
7: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
8: BTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है.
9: फूड बिल्ड्स अ चाइल्ड्स बॉडी अप, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
10: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: City FM 89. Easy Paisa लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy Paisa QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. Easy Paisa डिजिटल बैंक. Easy वाला बैंक.
6: City FM 89.
7: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
9: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट. हाउएवर, यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड. दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड. प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी मदर. For a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
10: City FM 89.
9: Attention! The standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective.
11: The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
12: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
13: The Rush Hour with ABD.
11: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m. Tune in or get left behind.
4: You're listening to City FM 89.
6: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM. City FM 89.
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
6: सिटी एफएम 89।
7: With food prices jumping up by 50%, a simple nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
8: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: Everybody go!
1: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: You got me going crazy.
10: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
11: सिटी एफएम 89.
12: BTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू हैं.
3: सिटी एफएम 89.
13: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
14: सिटी एफएम 89.
15: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर 5th बर्थडे येट. हाउएवर, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
16: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
2: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to

0: lineup for roughly 18 full months. Current timeline reports indicate the standard successor will not arrive until the spring of 2027.
1: City FM 89.99.
2: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa digital bank. Easy wala bank.
3: City FM 89.99.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शराइत तो सवाबित लागू है।
1: सिटी FM 89।
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
10: We're playing your song.
11: Pakistan is failing its future.
12: Every single day, 27 mothers die giving life.
11: And 675 newborns don't see their first month.
12: It's a crisis we ignore.
11: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
12: Their growth, their brains held back forever. Why?
11: Poverty forcing families to buy empty calories.
12: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
11: A health system that is failing our mothers.
12: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
11: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
12: This isn't just a statistic. This is our future generations.
11: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
12: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
4: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
13: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
6: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hain.
4: You're listening to City FM 89.
7: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: सिटी एफएम 89.
9: 106 आउट ऑफ 123. दैट्स वेयर पाकिस्तान सिट्स ऑन द हंगर इंडेक्स. दिस इज मोर देन अ बैड रैंक. पाकिस्तान इज अ कंट्री स्ट्रगलिंग विद मैलन्यूट्रिशन, स्टंटिंग, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
11: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM, FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89,
5: we're playing your song. पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. Jazz Cash से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की? हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए Jazz Cash है ना?
2: City FM 89.
6: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se nye shoes khariden. Aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil karein. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping karein aur cashback ka fayda uthayein. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: City FM 89.
4: We're playing your song.
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
8: सिटी एफएम 89.
9: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट. हाउएवर यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड. दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड. प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी मदर. For a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
2: City FM 89.
1: You're listening to The

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
0: सिटी एफएम 89.9.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है.
0: You're listening to City FM 89.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: City FM 89. With food prices jumping up by 50%, a simple nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning and their future. Poverty strips away proper nutrition.
6: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
7: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
1: City FM 89,
8: your drive-along companion.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future Songs.
10: Vibe with us, your music.
11: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing
5: your
4: song.
5: Trending today.
6: Apple is preparing to break a historical hardware lifecycle record as the iPhone 17 positions itself to become the brand's longest-running standard flagship smartphone in 15 years. Originally released in September 2025, the base tier model is projected to sit at the top of the mainline consumer lineup for roughly 18 full months. Current timeline reports indicate the standard successor will not arrive until the spring of 2027.
1: City FM 89.
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
3: City FM 89
1: On the dial.
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
3: सिटी एफएम 89।
9: पाकिस्तान इज फेलिंग इट्स फ्यूचर।
10: एवरी सिंगल डे 27 मदर्स डाई गिविंग लाइफ
9: एंड 675 न्यूबॉर्न्स डोंट सी देयर फर्स्ट मंथ।
10: इट्स अ क्राइसिस वी इग्नोर।
9: राइट नाउ 40% of our kids under 5 are stunted.
10: Their growth, their brains held back forever. Why?
9: Poverty forcing families to buy empty calories.
10: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
9: A health system that is failing our mothers.
10: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they